0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक कलबीत, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
6: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
7: 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
6: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
7: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: सलाहकार स्टीव विटकॉफ ऐं सदर ट्रंप जे अनाठी जीअर्ड कुशरुल जंग जे खात्मे बाबति शुरूआती मसूदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे. मसूदे मूजिबि जंगबंदी में 60 ॾींहनि जे वाद जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे. उन दौरान ईरान जे एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं. अमरीका ईरान बंदरगाह जी नाकाबंदी में मरहलेवार नरमी कंदो ऐं तेहरान खे पाबंदियुनि में रिलीफ ऐं परडेह में मंझबंद असासा बि वापसि कया वेंदा. अमरीका जो नज़रसानी मसूदे ते जवाब अॼु अचण जो इम्कान आहे. फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो ईरान जो इंतिही मुख़्तसर पर नतीजे ॾींदड़ साबित थियो. ईरान अमरीका विच में हतमी मुआदे में हकारी अकबराई. ISPR मूजिबि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईरान जो इंतिही अहम दौरो मुकमल कयो. फील्ड मार्शल सासी जी कोशिशुनि तौर ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं कयूं. मुलाक़ातुनि दौरान खिते में छिकताण घटाइण ऐं तामीर राब्तनि खे हथी ॾियण ते ख़्यालनि जी ॾेवट थी. ईरानी क़यादत इलाक़ाई मसइलनि जे पुरमन हल लाइ पाकिस्तानी तामीर किरदार खे साराहियो. फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सफारती कोशिशुनि जो हिसो हो. मुलाक़ातुनि में ईरान अमरीका हतमी मुआहिदे ॾांहुं हकारी अगबराई थी आहे. अमरीकी सदर ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी वली अहद तुर्किया जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां टेलीफोनिक राब्ता. अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे. ईरान सां मामला तकरीबन तय थी विया आहिनि. मुआहिदे बाद अब न हुरमस खोले छॾींदासीं. उमीद आहे त मुआहिदो ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकींदो. मुआहिदे खां अॻु नुक़्ता मीडिया खे न ॿुधाईंदासीं. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हू सदर ट्रंप खे अमुन लाइ संदसि गैर मामूली कोशिशुनि ऐं सऊदी अरब ऐं कतर तुर्किया मिस्र गडियल अरब इमारात उर्दन बहरीन पाकिस्तान जे अॻवाननि सां हिकु नतीजा खेस मुबारक थो. वज़ीर आज़म पंहिंजे पैगाम में चयो त ईरान अमरीका घरनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई. संदसि उन अमल में अणथक कोशिशुनि खे साराहियूं था. फील्ड मार्शल मौजूदा इलाक़ी सूरतहाल ऐं अमन कोशिशुनि खे अॻिते वधाइण लाइ ख़्यालनि जी ॾेवट जो मौको फराहम कयो, जीअं खिते में चटादार अमन क़ाइम करे सघिजे. पाकिस्तान पंहिंजे अमन जी कोशिशूं इंतिहाई ख़लूस सां गॾु जारी रखंदो. उमीद आहे तमामु जल्द असां ईंदड़ दौर जी मुज़ाकरात जी सरबराही कंदासीं.
4: व्हाइट हाउस 12 फायरिंग वारे जवाबदार हिकु

0: व्हाइट हाउस बारां फायरिंग में हुनजो जवाबदार हिकु वाटर सिक्योरिटी फोर्स जवाबी कार्रवाई में मारिजी विया। व्हाइट हाउस बारां चेक पोस्ट ते फायरिंग कंदड़ जवाबदार सुञाणप मेरीलैंड वासी 21 साला नाइसर बेस तौर कई वई। जवाबदार जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक न हो, पहिरियां बि सेक्रेटरेट सर्विस जे अहलकारनि सां विढ़ी चुको हो। वाके बाद व्हाइट हाउस में लॻायल लॉकडाउन ख़तम। गुज़िरियल राति हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सिस चेक पोस्ट ते हमिलो करे 30 खां वधीक गोलियूं फायर कयूं। गोलियुनि जे ठिकाणे सबबि सहाफ़ियुनि ऐं अमले में भाॼ पइजी वई, खौफ़ हिरास पकड़िजी वियो। वाके बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो, खेसि महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल कयो वियो।
1: बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो टे लॻी अथसि, हिते रस्ते में साह ॾिनो। वॾेरा माण्हू पासा आहिनि, पर पोइ इन फायर थी विया।
0: तुलभर सां वॾेरे जे पुट तां क़तल थियल पोइरत जो खून रोअण जूं कोशिशूं। पुलिस पोइरत अजमल मेमुड़ ते गोलियूं हलाईंदड़ वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न कयो। पुलिस वाके जी अणधुरी जांच करण बदिरां वॾेरे बिलाल सरकी जी विंगार वहण लॻी। पुलिस चौकीदार अजमल जे क़तल खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त वॾेरो बादशाह माण्हू आहे, बस गोली हली वियसि, नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि, बस इतफ़ाक़ थी वियो।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हे किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो कीअं छो ऐं छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ बीमार थियो इहो किसो तव्हांखे आ सही करे थो ॿुधायां आश्क वेचारो जड़ बीमार थियो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे चई त मूंखे पंहिंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउं उते मरंदुसि जो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो कुल्हे कांधी थिए

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अपन माहदे जो मसूदे जो मुतफिक है बिनी मुल्क में 24 कलाकन अंदर मुआहदो थियण जो इम्कान अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स मूजिब फील्ड मार्शल सदार मुनीर अमरीका ऐं ईरान विच में मुआहदे लाइ मर्कज़ी किरदार अदा कयो आहे. ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिबात अमरीकी नैप्रदा जिडिवेंस ख़सूसी सलाहकार स्टीव वटकोव ऐं सदर ट्रम्प जे नाठी जेयर्ड कुश्नर जकन जंग जे खात्मे बाबति शुरूआती मसूदे जी मंजूरी ॾेई छॾी. मसूदे मूजिब जंगबंदी में 60 ॾींहनि जे बाद जी तजवीज़ ॾिनी वई ऐं उन दौरान ईरान जे एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं. अमरीका ईरानी बंदरगाह जी नाकाबंदीअ में मरहलेवार नरमी कंदो ऐं तेहरान खे पाबंदीअ में रिलीफ ऐं परडे में मंझमंद असासा बि वापसि कया वेंदा. अमरीका जो नज़रस्थानी मसूदे ते जवाब अचण जो अॼु जो इम्कान आहे. फील्ड मार्शल सदासम मुनीर ईरान जो इंतहाई मुख़्तसर पर नतीजा ॾींदड़ साबित थियो. ईरान अमरीका विच में हतमी मुआहदे में हकारी अगभराई. आईएसपीआर मूजिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सदासम मुनीर ईरान जो इंतहाई अहम दौरो मुकमल कयो. फील्ड मार्शल सालसिया जी कोशिशुनि तौर ईरानी क़यादत सां मुलाकातूं कयूं. मुलाकातुनि दौरान खिते में छिकताण घटाइण ऐं तामीरी राब्तनि खे हथी ॾियण ते ख़्यालनि जी ॾेवट थी. ईरानी क़यादत इलाक़ाई मसलनि जे पुरमन हल लाइ पाकिस्तान तामीर किरदार खे साराहियो. फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सफारती कोशिशुनि जो हिसो हो. मुलाकातुनि में ईरान अमरीका आतमी मुआहदे ॾांहुं हकारी अगभराई थी आहे. अमरीकी सदर ट्रम्प जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी वली अहद तुर्कीअ जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां टेलीफोनिक राब्ता. अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे. ईरान सां मामला तकरीबन तय थी विया आहिनि. मुआहिदे बाबति आबना हुरमस खोले छॾींदासीं. उमीद आहे त मुआहिदो ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकींदो. मुआहिदे खां अॻु नुक़्ता मीडिया खे न ॿुधाईंदासीं.

0: तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ 2131525786
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज
4: It's 1:15 PM.
5: This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: रंगीला ने अपने फिल्मी करियर का आगाज सन 1958 में फिल्म जट्टी से किया। 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान।
1: तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजीव दंदड़ा सभी समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुले दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जाकर जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत चांद से तार तक, हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सोच जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सखर मोहरो मीरपुर खास मटियारी सखर मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जनाब बताएंगे आप लोगों को किस तरीके कार से जो है ना आप अपनी खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, आप अपने खूबसूरती

को हमेशा के लिए मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, स्किन अगर चाहते हैं कि भाई हमेशा ग्लोइंग रहे, तो आपने इस्तेमाल करना है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और कौन से प्रोडक्ट्स है, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कब लगाने हैं, ये बहुत ज्यादा वाली बातें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल जी, जरा अपना तारुफ करवाते हैं। रीजन The most beautiful, fantastic, interesting, and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan. नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी, जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। बताइए कि आप ही हमारे साथ मौजूद हैं, कहां कहां से सुन रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। तो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद हम चदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मूड के साथ बिल्कुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी ना, वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजा तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी तीन बजे तक। यानी कि ठीक अब से लेकर मैं पूरे तीन बजे तक आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और जनाब, बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, बहुत ज्यादा वाला फन करेंगे, बहुत ज्यादा वाले खूबसूरती के राज आप लोगों को बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ साथ कनेक्ट रहने के लिए, हमारे साथ फन करने के लिए रेडी ही हो जाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों का है। और आप लोग अगर नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा। बिल्कुल जी, आ जाइए प्रोग्राम में। और साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्रियो का हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आगा से प्रोग्राम किया जाएगा। और आज एक बहुत प्यारा सा हम कलाम सुनते हैं प्रोग्राम के अंदर, और कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये आप लोगों को बताते हैं। तो आपका हमारा साथ पूरी तीन बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: का मास्टर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में क्योंकि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया होगा। तो आज आप मुझे ये बताइए जरा क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं। क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना चेहरा रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं ये आज आप मुझे बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे। ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं समझ रहे हैं। ओके जी तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे वो कल के राइट ऑप्शन में जाएंगे टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस लेके अपना नाम लिखेंगे पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जाइए लाड़काना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर करते जाइए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाईजान मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो जितनी ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए खूबसूरती के बारे में कि भाई आपको खूबसूरती कैसे हासिल हो सकती है तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बताया करें लोगों को कि भाई आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं खूबसूरत कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाँ जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने हैं क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है ना वो ये भी पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें तो उसमें आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आ जाती है और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है ना व्हाइट एज की लवली क्रीम आ जाती है। अब ये दो क्रीमें हैं एक नाइट क्रीम है और एक ऐसा समझ लें कि डे क्रीम है यानी कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो वो आप रात के टाइम लगाएंगे बाकी अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाते हैं तो वो आप पूरा दिन लगा सकते हैं किसी भी टाइम लगाइए ठीक है रात में भी लगा सकते हैं लेकिन ये देखा जाए तो भाई उन लोगों के लिए जो कि अच्छी वाली फेयरनेस क्रीम की तलाश में और फेयरनेस क्रीम आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद होगी जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है। उसके साथ साथ व्हाइट एज का आप लोगों को साबुन मिल रहा है और उसके साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार है और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ना जी डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि व्हाइट एज वालों का ही है लेकिन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम नाम लेकर आप परचेज कर सकते हैं जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है जो कि आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेंगे आपके चेहरे के एक्नी का कंट्रोल करेंगे आप लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा लाते जाएंगे क्योंकि जब एक्नी आपके चेहरे पर आ जाते तो यकीन जाने मजा ही नहीं आता जिंदगी ऐसी अजीब अजीब सी लग रही होती है। तो अगर आप टीनेजर से अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी आना स्टार्ट हुए या फिर आप एक्नी से सफर करें काफी ज्यादा तो भाई आपको चाहिए कि आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी जो ट्यूब है ना वो जरूर ट्राई करके देखें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएंगे और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए। जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रोज देख रहे होते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पर हुआ जाता है टाइम के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: आप सुन रहे हैं TFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज़। अब आप
2: आपकी खूबसूरती का फैन, बाइट एज ब्यूटी क्रीम।

White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियाँ, जिसके Minerals Skin में fully absorb हो जाए, Skin को Fair और Fresh बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा White H Beauty Soap से मिले।

0: एलोवेरा फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन में हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

ही गानो ना माणन के डेडिकेट जके वाइट ऐसा प्रोडक्ट लगाएन पया सोना थी जान अल्लाह सद देखो ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ मेरी नाइस इदरा शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुक हमारे साथ मौजूदी नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ मौजूदी वालेकुम असलम टंडो अल्लाह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

इलियास अहमद लाहौर भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम। सारा खा लेते थे मेरे मोबाइल सेट में आईना फिट, सो मैं 24/7 आईना देखता रहता हूँ, इससे मुझे अपने आप को समझने में आसानी होती है। क्या बात है, चाचा तो बाबा चाचा है ना। देते आज टॉपिक बड़ा सुंदर रखा है आपने, सच्ची बताए। अच्छा रियाज अहमद कहते शो नाइस है आपका, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम करते हैं आपको। और ये है जी चाचा खालिद कहते खूबसूरती तो डी स्किन क्रीम से आसान और दिल की खूबसूरती व्हाइटिश लवली क्रीम से आसान। क्या मतलब, एक लगाते दूसरी खाते। ना करें।

0: से क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए, जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आहे, मुख्य गानो बुधरा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर, बिल्कुल यो गाना जैसा जरूर बुधंदास। अमा बुधाया थी तो मां पांजो मुंह मुबारक जको केतरा दफा जको है ना डीए में डसंदी। वकास कहते हैं फ्रॉम विलेज अली। अच्छा शेदार कोर से, सही है, आपको हमारे शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। खास अब्दुल्ला महर वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है। वाह सही वाह, ले तमाम दोस्त जी अफा देरी सऊ देरी फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाईजान को वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला नहीं बल्कि शुएब महर हैं बाजी, कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता। अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए। इशारा होगा कहाँ गया वैसे। चलिए ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं, ऐसा भी मत किया करें। चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें, और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा, हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, तो आप नहीं कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि
1: आप सुन रहे थे। अब आप सुनेंगे
2: में पाकिस्तान चीनी कंपनियों विच में मफामती यादाश्त नावन ते सयूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के शहर हांगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे चयो त असां पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकम्मल थियण जो जश्न मल्हाए रहा आहियूं। सदर शी जिनपिंग चीन के आलमी मुआशी अस्करी ताकत बणायो, पाकिस्तान में मादनियात जा वॾा ज़खीरा मौजूद आहिनि, सिणपकारी जी घुर्ज आहे।

0: ईरान अब नए हुर्मज खोलो का फीस न वो पैंजा विछायल माइल्स हटाई अमरीका जवाब में नाकाबंदी खत्म कंदो अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक्ता सामू आने छा अमरीकी अहदेदार मूजिब ईरान आजादी से तेल विकणी सो वो सब डील तहत 60 डी की जंगबंदी में वाद दौरान थी तो मफामती यादाश्त में वायदो शामिल हों त ईरान कदें भी एटमी हथियार हासिल न कर रचाव थल यूरेनियम के खात्मे की गाल कदो डील में लबनान जंगबंदी जो खात्मो भी शामिल है। ईरान माहदे ते गालियों मुकम्मल थे डील जो ऐलान जल्द थी सके तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो मुस्लिम मुल्क के अगवाणों से गाल बोल हाकारी रही फील्ड मार्शल सद आसिम मुनीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इमारती सदर तुर्क सदर मिस्र के सदर कतर के अमीर से भी फोन से गालू थी माहदे बाद अपना हुरमत भी खुली वो डील बावजूद अबन हुरमज असो कंट्रोल हों तर्जमान खातम उलंबिया हेडक्वार्टर का चवण है अबन हुरमज का गुजरण जो वक्त आमेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख्तियारू ही जारी कंदू ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बाकाई है तैमोज आखिरी मरहले में आन तफसीली गाल एक बिन महीन तारी रही सन थियं ईरान ए अमरीका विच में डील के वेझो पहुंचने वाली गाल वक्त का अग जो ईरान जो एटमी प्रोग्राम अं बहस हेठ न
1: आप सुन रहे थे GAFM आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli
0: PM.
1: This time check is brought to you by
2: Muhammad Umar Bugyo Institute of Nursing in Allied Health Sciences, Mirwa Road, near District Jail.
3: में पैदा हुए उनका असल नाम सईद खान था। अहद शबाब में अदाकार रंगीला भी किसी की जुल्फ के असीर हुए थे, लेकिन मुआशरे में मौजूद जमालियाती तजाद की वजह से वो इस जुल्फ को सर न कर पाए और बदसूरती के ताने सहने के बाद कुछ कर दिखाने फिल्मी दुनिया में चले आए।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

कोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद है दहशतगर्दन मासूम शहरन के निशानो बनाया है। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी चयो तो दहशतगर्दन उन्हन जा सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाए कोशिशन के नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन्हन जे सरपरस्तन जो असल चेहरो डिसे। वजीर आजम चयो तो धमाके सब मासूम जानू विंजायजी वयू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजदलाणी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर न थियूं करे सघन। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन फोटो जरदारी चयो तो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करण वाल साजिशों नाकाम थन्द। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बलोचिस्तान के वडे वजीर सरफराज बुख्टे की सदारत हेठम इजलास। आईजी बलोचिस्तान इजलास के चमन फाटक वेझो धमाके की शुरुआती रिपोर्ट पेश कई। मोहसिन नकवी चयो तो वहशियन चमन में मासूम शहरन ते हमलो करे शर्मनाक अमल जो मुजाहिरो कयो। सरफराज बुख्टी जो चवण हो तो फितना हिन्दुस्तान के दहशतगर्दन के मंतकी अंजाम ते पहुंचायो वेंदो। शहीदन के कुटुंबन के अकेलो न छॾींदासीं। जख्मियुनि के इलाज लाइ मां पाण निगरानी करे रहियो आहियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए नायब वजीर आजम इसहाक डार की मौजूदगी में पाकिस्तान ए चीनी कंपनियों विच में मफामती याददाश्त नामन ते सयूं। वजीर आजम चीन के शहर हांगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे चयो तो असा पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकम्मल थियण जो जश्न मल्हाए रहा आयूं। सदर शी जिनपिंग चीन के आलमी मुआशी अस्करी ताकत बणायो। पाकिस्तान में मैदनियात जा वडा जखीरा मौजूद आहिनि। सीड़पकारी की घुर्ज आहे।

ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलींदो ऐं का फीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तम कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादीअ सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो। मुफ़ामती याददाश्त नामनि में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाव थियल यूरेनियम जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान معاہدے تے ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि। डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। معاہدے बाद आबडाए हुर्मुज़ बि खोलियो वेंदो। डील बावजूद आबनाए हुर्मुज़ ते असांजो कंट्रोल हूंदो, तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर सां चवणु आहे त आबनाए हुर्मुज़ खां गुज़रण जो वक़्तु ऐं मेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारियूं जारी कंदियूं। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त MOUs आख़िरी मरहले में आहिनि। तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारियूं ॻाल्हियूं वक़्त खां अॻु जूं आहिनि। ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि न आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण आहे त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प मुस्लिम अॻवाननि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजनि जी उमेद पैदा थी आहे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गॾियल एहतराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ छिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारीअ खे तरजीह ॾियणी पवंदी। पाकिस्तान ज़रिए उमाड़ियल नई तजवीज़नि में लबनान में जंगबंदी बि शामिल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त तेहरान जो ज़ोर आहे त जंग ख़तम थियण जी कंहिं बि मुआदे लाइ लबनान में जंगबंदी मुआदो लाज़मी हूंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: शदीद गर्मी के पाए शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252578 6।
7: जी हाँ, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: grand prize 600cc car saath hi motorcycles smartphones aur smartwatches
1: in bhai sahab ki tarah bada khwab dekhe 578 shahron mein bank alabib ke 1320 se zyada branches aur globally trusted partners ke sath aapka paisa duniya ke kisi bhi kone se aap tak minton mein pahunchta hai
0: apni remittance 19 february se 25 mai ke darmiyan bank alabib se vasool kare aur har mahine lucky draw mein shamil ho jaye
1: तो भाई साहब क्या समझे
2: बैंक हबीब रिश्ता भरोसे का
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: दहशतगर्द मारजी वाया ISPR मुजिब सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारजी दहशतगर्दन के मारे वयो दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद मिलो है। मारजी वेल खारजी दहशतगर्द दहशतगर्दी के केतरन ही कार्रवाई में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज परदेही मदद से थींदड़ दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरजम है। KPJ इलाके बनू में पाक फौज पुलिस ए CTD जो गडल ऑपरेशन सिक्योरिटी जरन मुजिब ऑपरेशन में 16 खारजी मारजी वया पुलिस ब पुलिस अहलकार भी शहीद। सिक्योरिटी फोर्स जो चवना है तो ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन के ठिकान के तबाह कर पाक फौज ए पुलिस समेत बेन सिक्योरिटी

कोटिया जे शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी जे मावन शाहिद रिंद जी तस्दीक। शाहिद रिंद चयो आहे त दहशतगर्दन मासूम शहरन के निशानो बणायो आहे। वजीर आजम ऐं सदर पारां चमन फाटक धमाके जी मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त दहशतगर्दनि ऐं उन्हनि जा सरपरस्त पाकिस्तान खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान जे अमन लाइ कोशिशुनि खे नुक़सान रसाइण चाहिनि था। दुनिया दहशतगर्दनि ऐं उन्हनि जे सरपरस्तनि जो असुल चेहरो ॾिसे। वज़ीर आज़म चयो त धमाके सबबु मासूम जानियूं विञाइजी वयूं। दहशतगर्दनि जूं अहिड़ियूं बुज़दिलाणियूं कारवायूं पाकिस्तानी अवाम जो अज़म कमज़ोर नथियूं करे सघनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त भारतीय सरपरस्तीअ में सरगर्म नेटवर्क ऐं पाकिस्तान जे दुश्मननि जूं मुल्क खे गैर मुस्तक करण वारियूं साज़िशूं नाकाम थींदियूं। सदारत टाइम इजलास आई जी बलोचिस्तान इजलास के चमन फाटक वेझो धमाके जी शुरुआती रिपोर्ट पेश कई। मोहसन नकवी चयो त वहशियुनि चमन में मासूम शहरन ते हमलो करे शर्मनाक अमल जो मुज़ाहिरो कयो। सरफराज बुख्टी जो चवण हो त फितना हिंदुस्तान जे दहशतगर्दन खे मंतकी अंजाम ते पहुचायो वेंदो। शहीदन जे कुटुंबनि खे अकेलो न छॾींदासीं। ज़ख़्मियुनि जे इलाज लाइ मां पाण निगरानी करे रहियो आहियां। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी मौजूदगी में पाकिस्तान ऐं चीनी कंपनियुनि विच में मफ़ामती याददाश्त नामनि ते सयूं। वज़ीर आज़म चीन जे शहर हांगज़ू में बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे चयो त असां पाक चाइना दोस्तीअ जा 75 साल मुकमल थियण जो जशन मल्हाए रहिया आहियूं। सदर शी जिनपिंग चीन खे आलमी मुआशी अस्करी ताक़त बणायो। पाकिस्तान में मैदनियात जा वॾा ज़ख़ीरा मौजूद आहिनि। सीड़पकारीअ जी घुर्ज आहे।

ईरान आबन हुरमस खोलींदो ऐं काफीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तम कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादीअ सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो। मुफ़ामती याददाश्त नामनि में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाव थियल यूरेनियम जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि। डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। मुआदे बाद आबडाए हुरमज बि खोलियो वेंदो। डील बावजूद आबनाए हुरमस ते असांजो कंट्रोल हूंदो। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर सां चवण आहे त आबनाए हुरमस खां गुज़रण जो वक़्त ऐं मेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारियूं जारी कंदियूं। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त MOUs आख़िरी मरहले में आहिनि। तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारियूं ॻाल्हियूं वक़्त खां अॻु जूं आहिनि। ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि न आहे।

0: Lily.
1: It's 6:15 p.m.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फाजी सिर्फ बिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GTH नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तुझे फैन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बल बल पढ़न दे यार सजर दी हुंदी तां कुछ जुदाई मुस्लिम विचों का फर्थी वन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू मैंने महबूब समिरन न वन तुझा दुश्मन टोखे होते तुझा वेरी मारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पोंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।